0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष शिवप्रसाद जोशी बेसीतह नगरपालिका वड़ा नंबर 11 को कार्यालय सम्पर्क फोन नम्बर 9851251500।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष युवराज अधिकारी उपाध्यक्ष बिचबहादुर गले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफे एवं दोर्जी गांवपालिका परिवार नौथर सेरा लमजुङ

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगायत जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष भीम बहादुर गुरुङ, प्रधान अध्यापक मेन बहादुर घले, ग्लोबल भिजन बोर्डिंग स्कूल परिवार, सुन्दर बजार नगरपालिका 9 लमजुङ। सम्पर्क फोन नम्बर 98560 46028।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। कार्यालय प्रमुख उत्सव पोखरेल खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय विशिष्टहर लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नगर प्रमुख रमेश कुमार पाण्डे, उप प्रमुख सीता गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला एवं मध्य नेपाल नगरपालिका परिवार ढोलेटार लम्जु

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष उमर गुरुङ सिउरुङ सामुदायिक होमस्टे परिवार सम्पर्क फोन नम्बर 98412 38033।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष उमर गुरुङ सिउरुङ सामुदायिक होमस्टे परिवार सम्पर्क फोन नम्बर 98412 38033।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद राइनस बहुप्राविधिक शिक्षालय राइनस नगरपालिका 8 लमजुङ।

0: शुभ कामना।
1: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी लगायत संपूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङ, उपाध्यक्ष क्षेत्र बहादुर गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शमशेर गुरुङ एवं दुधपोखरी गाउँपालिका परिवार गौडा लमजुङ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगाय जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष भीम बहादुर गुरुङ, प्रधानाध्यापक मेन बहादुर घले, ग्लोबल विजन बोर्डिंग स्कूल परिवार, सुन्दर बजार नगरपालिका 9 लमजुङ। संपर्क फोन नंबर 9856460028।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष शिवप्रसाद जोशी बेसीसहर नगरपालिका वडा नम्बर 11 को कार्यालय सम्पर्क फोन नम्बर 9851 25500

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङ, कार्यालय प्रमुख विष्णु बहादुर अधिकारी एवं बेसी शहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति परिवार बेसी शहर नगरपालिका 8 लमजुङ।

वडा नम्बर 9 सिउडीबार लम्सुल कृषक जागरण सहकारी अगाडि कृषि विकास बैंक नजिकै सम्पर्क फोन नम्बर 97 69 77 68 60 97 69 77 68 60 र 98 21 57 56 36 98 21 57 56 36 ग्रह व्यथा

0: मैं शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
1: अध्यक्ष नन्दराज तामाङ, प्रधानाध्यापक अर्जुन भण्डारी, हिमचुली आवासीय माध्यमिक विद्यालय परिवार, मर्स्याङ्गी गाउँपालिका 3, पुदी, लमजुङ।

0: वर्ष 2083 को पावन अवसर में जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजू भाई दीदी बहनी लगायत संपूर्ण नेपाली में सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सिंचाई गरौ उत्पादन बढ़ाऊ जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिविजन कार्यालय परिवार विशेषह नगरपालिका।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगायत जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष ईश्वर पौडेल, सचिव विनोद गुरु, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन पेप्सन लम्छन्।

0: 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगाय जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजु भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष संतराम गुरुङ, प्रधान अध्यापक सोम बहादुर भण्डारी, महेन्द्र देव माध्यमिक विद्यालय परिवार, मसंगी गांव पालिका 7, तरंगजे लमजुङ।

0: तिमी त मेरो परान हो नि मैया, तिमी बिना जिन्दगी कहाँ चल्छ र?
1: चिनी भयो नि हामी एक हुन सक्दैनौ के रे?
0: ल किन के रे फेक्छ र?

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगायत जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष ओम बहादुर घिमिरे प्रधानाध्यापक विमल अधिकारी यूनिवर्सल एकेडमी विद्यालय परिवार बेसीतह नगरपालिका 7 लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगाय जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष संतराम गुरुङ, प्रधानाध्यापक सोम बहादुर भण्डारी, महेन्द्र देव माध्यमिक विद्यालय परिवार, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 7, तरङ्जे, लमजुङ।

0: शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष शिव प्रसाद जोशी जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय परिवार विशेषह नगरपालिका 11 चिती रामजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत संपूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपाइटर गोविंद बस्नेत, जयश्री कालिका मिनी क्रशर उद्योग, विशिष्ट नगरपालिका एक लम्सुङ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगाय जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजु भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करद। अध्यक्ष नन्दराज तामाङ, प्रधानाध्यापक अर्जुन भण्डारी, हिमचुली आवासीय माध्यमिक विद्यालय परिवार, मर्सङ्गी गाउँपालिका 3, खुदी लमजुङ।

पितृ पर्खिनेलाई पो हुँदो रहेछ नि, ए प्रकृति ए देवी देवता बचाइराखिदेऊ है।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजू भाई दीदी बहनी लगायत संपूर्ण नेपाली में सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष शिव प्रसाद जोशी बेसिता नगरपालिका वार्ड नंबर 11 को कार्यालय संपर्क फोन नंबर 98515

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी संपूर्ण बा आमा दाजू भाई दीदी बहिनी लगायत संपूर्ण नेपाली सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङ, कार्यालय प्रमुख विष्णु बहादुर अधिकारी एवं बेसीचहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति परिवार बेसीचहर नगरपालिका आठ लमजुङ।

2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगायत जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजु भाई तथा दीदी बहनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रधानाध्यापक विनोद गुरुङ भूपु सैनिक आवासीय माध्यमिक विद्यालय परिवार बेसीसह नगरपालिका 7 लमजुङ।